एक होती मुलगी, एकदा की नहीं ती जाम रुसली, जाम रुसली, जाम रुसली पोपऱ्यात जा।

0: तू सत्यानाश।
1: रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना, रूप तुला नस्ताना एक्टिंग बॉम्ब अस्ताना, कौन हीरोइन तुझला कर लगा अक्का।
2: अब असं काय करता, अजून एक चांस द्या ना।

हिल पर हिला तुझे कप्पा लीला टीला, आगो हिल हिल पर हिला तुझे कप्पा लीला टीला, तुझे कप्पा लीला टीला, तुझे कप्पा लीला टीला, गो फैशन मराठी सोबत।

कनत सोन्या चबालिया अतु जना जुग पालन कनत सोन्या चबालिया अतु जना जुग पालन कनच वट बगत राईली अकल्ला विरोते आवरीग कनच वट बगत राईली।

या लठायाला दिल दुखात है, हाय दिल तो उपाशी रात है, या लठायाला दिल दुखात है, हाय दिल तो उपाशी रात है, दिल हकलुन मागारी ये ते, काय बोलत नाय काय मागत नाय जीव

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: श्रोते हो नमस्कार, तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM आवाज तुमचा. मंडई, प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी आपल्या देशाचे पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्रजी मोदी हे आकाशवाणीच्या मन की बात या कार्यक्रमात देशातील जनतेशी संवाद साधतात आणि काल त्यांनी साधलेला संवाद ऐकूया रेडिओ नगर 90.4 FM वरून.
1: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार. मन की बात के इस नए एपिसोड में आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं. आप सब जानते हैं कि एक ऐसा मंच है जहां हम नए प्रयासों को सामने लाते हैं, देशवासियों के इनोवेटिव आइडियाज पर चर्चा करते हैं. इनमें से कितने ही आइडियाज ऐसे होते हैं जिनके पीछे लोगों ने जीवन की अथक ऊर्जा लगाई होती है. साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं. उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है. आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें. यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था. मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा. मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए. मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है. मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com. उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए. इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए. साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं. कृष्णा जी नमस्ते.
2: नमस्ते सर. नमस्ते
1: भाई. मुझे पता चला है, न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली. तो मुझे बहुत उत्सुकता है, ये सब कैसे हुआ?
2: धन्यवाद सर, आपसे बात करके मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है. तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया. लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था. तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग. एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं.
1: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा कि इसका जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
2: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है. इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते. तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए.
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ. अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
2: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे. तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंडा चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है ये, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
1: कृष्णा जी, आपको लगता है कि इतिहास को जी रहे हैं, आप पूरी तरह इतिहास में डूब चुके हैं। देखिए, मैंने भी बड़े उत्सुकता के साथ आपकी साइट देखी है, और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि आपकी साइट पर एक ऐसा टैब है जहां लोग करेक्शंस और सजेशन भी दे सकते हैं। ऐसे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए ओपन रहना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्या आपको लोगों से सुझाव मिलना शुरू हुआ है क्या, और आप उन पर कैसे काम करते हैं?
2: हाँ सर, इन लोगों से बहुत सुझाव आते हैं सर। सुझाव 2 प्रकार के आते हैं। एक सुझाव ऐसे आते हैं जो हमको करेक्शन सजेस्ट करते हैं कि इस प्रदेश में, इस टाइम में, इस राष्ट्र में ये राजा थे, या इस टाइम में ये युद्ध हुआ था, तो ऐसे कुछ सजेशंस आते हैं। दूसरे सजेशन आते हैं कि आप इस वेबसाइट में ये फीचर भी डाल सकते हो या वो फीचर भी डाल सकते हो। तो हमको दोनों प्रकार के सजेशन आते हैं। तो जैसे अगर हमको ऐसा एक सजेशन आए कि इस प्रदेश में इस राजा ने इस टाइम पे राज किया था, तो हम वो सजेशन को लेते हैं। तो हमारे जो सोर्सेस है, जैसे हमको इसी ने सजेशन में दिया था कि हमने इंडिया को तो दिखा दिया, अगर प्रदेश के लेवल पे भी दिखा सकते हैं तो और अच्छा होगा, तो हमने वो फीचर इम्प्लीमेंट किया। और फिर हमने दूसरे एक फीचर आया था जिसमें हमने एक ट्रम्प कार्ड जैसा बनाया था, सारे एम्पायर के डेटा स्टेटिस्टिक्स देखे ताकि वो बच्चों तक पहुंच सके। तो किसी ने एक सजेशन दिया था कि उसको आप एक जगह पे लेके आइए ताकि हम सब डाउनलोड करके हम सब शेयर कर सके, तो वो हम फीचर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो हमें जितना जानना इम्पोर्टेंट है कि हम गलती करेंगे, हम क्योंकि हम सर्वश्रेष्ठ नहीं है, और वो जान के ही हमने वो करेक्शन का टैग लगाया ताकि ये हम सबकी साइट हो, और आगे जाके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हम एक ऐसा साइट बनाए जो अगले कुछ साल तक इतिहास के एक मजेदार सब्जेक्ट बनाए।
1: कृष्णा जी, आपने सचमुच में बहुत बड़ा काम किया है। अच्छा, हिस्ट्री के अलावा आपकी कई सारी हॉबीज होगी, और भी बहुत कुछ करते होंगे आप?
2: नहीं सर, हम थोड़े बोरिंग टाइप आदमी हैं सर। हम टेक्नोलॉजी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं और इतिहास में रखते हैं, और जब हम टेक्नोलॉजी और इतिहास मिल गया इसी में हम डूबे रहते हैं पूरा दिन।
1: चलिए कृष्णा जी, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामना है, आपने एक अच्छी शुरुआत की है, और आपका तरीका भी ऐसा है कि लोग जुड़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामना है। साथियों, कृष्णा जी का ये प्रयास सिर्फ इतिहास के विद्यार्थियों को नहीं, ये हम सबको अपने अतीत को रोचक तरीके से जानने में मदद करेगा। आपके पास भी ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी हो तो उसे जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ये अभियान इस समय पूरे देश में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसका लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नशा मुक्त युवा, ड्रग फ्री इंडिया। बहुत सारे लोग, विशेषकर हमारे युवा, बहुत बड़ी संख्या में इसका हिस्सा बन रहे हैं। आखिर यह भारत के युवाओं की हेल्थ, उनकी हैप्पीनेस और उज्जवल भविष्य के लिए ही हमारा सामूहिक संकल्प है। साथियों, नशे की लत सिर्फ एक व्यक्ति को अपने लपेटे में नहीं लेती, इसके दुष्परिणाम पूरे परिवार और समाज को भी झेलने पड़ते हैं। मैं उन लोगों की सराहना करूंगा जो ड्रग्स के खिलाफ दूसरों को जागरूक करते हैं और नशे की लत से जूझ रहे लोगों की मदद में आगे आते हैं। नशा मुक्त भारत के लिए क्या आप कोई पावरफुल स्लोगन बना सकते हैं? क्या हमारे यंग म्यूजिशियंस ऐसे सॉन्ग्स बना सकते हैं जिनमें ड्रग फ्री लाइफ का मैसेज हो? क्या स्टूडेंट्स और थिएटर ग्रुप्स दिल को छू लेने वाले शॉर्ट प्लेज लिख सकते हैं जिनमें ड्रग्स के खतरों के साथ साथ उनसे बाहर निकलने का रास्ता भी हो? हमारे देश में बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर्स की कमी नहीं है। मेरा आग्रह है कि वे अलग अलग भाषाओं में ऐसा कंटेंट बनाएं जिससे इस दिशा में समाज को मदद मिले। आप अपने प्रयासों को हैशटैग के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। कई बार क्रिएटिव एफर्ट फॉर्मल कैंपेन से ज्यादा असरदार होते हैं। आइए भारत के युवा को नशे से दूर रखने, नशे से मुक्त रखने इस पवित्र कार्य में हम सब अपनी भूमिका निभाएं। आप अपने प्रयास को हैशटैग नशा मुक्त युवा के साथ सोशल मीडिया पर भी जरूर शेयर करें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगस्त के महीने में हमें हर तरफ देशभक्ति के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। इस समय हर व्यक्ति के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना और प्रबल हो जाती है। नेशनल हैंडलूम डे और भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ से लेकर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसे खास बनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस और नेशनल स्पेस डे, इसके अवसर तो हर देशवासी को गर्व से भर देते हैं। हर घर तिरंगा अभियान इस भावना को और मजबूत करता है। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने से यह साल और भी विशेष बन गया है। इस बार 8 करोड़ से अधिक तिरंगा सेल्फी अपलोड की गई और तिरंगे का ये उत्सव केवल भारत तक ही सीमित नहीं रहा। इस साल सूर्यपथ तिरंगा के जरिए हमारा तिरंगा दुनिया भर की एक अनोखी यात्रा पर निकला। फिजी के सुवा में सूरज की पहली किरण के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद एशिया, अफ्रीका, यूरोप और फिर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक इंडियन मिशंस और पोस्ट पर तिरंगा लहराता गया। आप कल्पना कर सकते हैं ये दृश्य कितने अद्भुत रहे होंगे। जैसे जैसे दुनिया भर में सूरज आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय तिरंगा भी लहराता गया। ऐसे प्रयास समाज को एक सूत्र में पिरोते हैं। इनसे देश के साथ भी हमारा जुड़ाव और गहरा होता है। इन प्रयासों में शामिल सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शहरों और कस्बों की सड़कों पर रोज सुबह से शाम तक लाखों महिलाएं अपने अपने काम में जुटी रहती हैं। कोई सब्जी बेचती हैं, कोई फल, कोई चाय का ठेला लगाती हैं, तो कोई फूल, दिए और पूजा की सामग्री बेचती हैं। कई बार बस थोड़ी सी पूंजी की कमी इनके कारोबार को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अब ऐसी लाखों माताओं बहनों को पीएम स्वनिधि योजना से नई ताकत मिल रही है। महिला सशक्तिकरण के इस पहलू की उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। पीएम स्वनिधि योजना की लाभार्थियों में करीब 46% महिलाएं हैं, यानी देश भर में लगभग 35 लाख महिलाएं इस योजना से जुड़कर अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही हैं। साथियों, गाजियाबाद की बबीता शर्मा जी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। बबीता जी पूजा की सामग्री का एक छोटा सा स्टॉल लगाती थी। फूल, दिए, अगरबत्ती, नारियल जैसी चीजें बेचकर वो अपने परिवार की आजीविका में हाथ बंटाती थी। मेहनत खूब थी, लेकिन कारोबार बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। पीएम स्वनिधि से उन्हें आर्थिक मदद मिली। उन्होंने अपने स्टॉल पर सामान बढ़ाया, कारोबार का विस्तार किया, ग्राहक बढ़े, आमदनी बढ़ी और धीरे धीरे सड़क किनारे का उनका छोटा सा स्टॉल एक दुकान में बदल गया। साथियों, बेंगलुरु की टीएस निंगम्मा जी की मिसाल भी बहुत प्रेरक है। निंगम्मा जी और उनके पति ने मिलकर इडली, डोसा और सांभार बेचने का छोटा सा काम शुरू किया। काम चल पड़ा, लेकिन इसे आगे बढ़ाने के लिए पूंजी की जरूरत थी। निंगम्मा जी को भी पीएम स्वनिधि से सहयोग मिला। उन्होंने अपनी कार्ट बेहतर की, सामान थोक में खरीदना शुरू किया और मेनू में भी कई नई चीजें जोड़ी। ग्राहक बढ़े, कमाई बढ़ी और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई। आज वो अपने 3 बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने में सक्षम हुई है। साथियों, जब एक महिला का कारोबार बढ़ता है तो उसके साथ पूरे परिवार का भविष्य आगे बढ़ता है। बच्चों की एजुकेशन बेहतर होती है, घर की जरूरतें पूरी होती हैं और महिला के भीतर आत्मविश्वास और मजबूत होता है। यही तो है महिला सशक्तिकरण का एक जीवंत रूप। मैं रेहड़ी पटरी के काम से जुड़ी सभी बहनों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वच्छता की एक बहुत बड़ी खूबी होती है। जब किसी जगह को स्वच्छ रखने का संकल्प वहां के लोगों का अपना संकल्प बन जाता है तो बदलाव केवल साफ सफाई तक सीमित नहीं रहता। इससे उस जगह की पूरी पहचान ही बदल जाती है। देश के अलग अलग हिस्सों में स्वच्छता के लिए ऐसे प्रयास हमें निरंतर प्रेरणा देते हैं। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक गांव है पटवाई। वहां आकाश और रोहन नाम के 2 दोस्तों ने देखा कि उनके आसपास का इलाका गंदगी से भर गया है। बस फिर क्या था, आकाश और रोहन ने कचरे के बैग उठाए और सफाई के लिए निकल पड़े। धीरे धीरे दूसरे युवा भी उनके साथ जुड़ने लगे। एक टीम भी बन गई जिसका नाम है क्लीनअप पटवाई। ये युवा अब तक 4 गंगा घाटों को साफ कर चुके हैं, 1 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा हटा चुके हैं। इन्होंने कितने ही तालाबों और सार्वजनिक जगहों की सफाई की है। साथियों, इस बार श्री अमरनाथ जी की यात्रा में भी स्वच्छता और जनभागीदारी की ऐसी ही प्रेरक तस्वीर देखने को मिली। कठिन रास्तों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन रात सेवा में जुटे रहे। इस वर्ष यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को कलेक्ट और प्रोसेस किया गया। मुझे इस प्रयास की एक बात विशेष रूप से अच्छी लगी, स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया। 10,000 से अधिक यात्रियों को रिस्पॉन्सिबल यात्री सर्टिफिकेट भी दिया गया। यहां एक बहुत अनोखा प्रयोग भी हुआ। यात्रा में घोड़ों और खच्चरों के गोबर को बायोगैस में बदला गया और उसी क्लीन एनर्जी से स्वच्छ ज्योत प्रज्वलित की गई। यानी बाबा बर्फानी की इस पवित्र यात्रा में स्वच्छता भी सेवा और आस्था का एक रूप बन गई। साथियों, हमारे गांव हो या शहर, हमारी नदियां हो या तीर्थस्थल, इनकी पहचान हमारे व्यवहार से भी बनती है। और जब स्वच्छता इस व्यवहार में शामिल हो जाती है, उस स्थान की शोभा और बढ़ जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, कभी कभी हमारा एक छोटा सा शौक जीवन में एक बड़ी संभावना का रास्ता खोल देता है। नागालैंड के फेक जिले की वैशालू पुरोजी की यात्रा भी कुछ ऐसी ही है। वैशालू जी किसान परिवार में पली बढ़ी। बचपन से उन्होंने अपने माता पिता को खेती करते देखा था और उन्हें खुद फूलों से बहुत लगाव था। साल 2021 में उन्होंने इसी शौक के साथ छोटे स्तर पर फूल उगाने की शुरुआत की। धीरे धीरे उन्हें इसमें एक संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने देखा कि शादी विवाह हो या फिर अन्य त्योहार, फूलों की मांग हमेशा बनी रहती है। वैशालू जी ने अपने इस शौक को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इस सफर में उन्हें स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र से फूलों की वैज्ञानिक खेती की ट्रेनिंग मिली। फिर उन्होंने केवल एक चौथाई एकड़ जमीन पर ग्लेडियोलस के हजारों पौधे लगाए। पहले ही प्रयास में 5,000 से ज्यादा फूल खिल उठे। साथियों, ये सफलता वैशालू जी के लिए एक नई शुरुआत बन गई। उन्होंने फूलों की खेती को और आगे बढ़ाया। जो फूल कभी स्थानीय बाजार में रह जाते थे, आज वो नागालैंड से निकलकर दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों तक जा रहे हैं। वैशालू पुरोजी की यात्रा हमें बताती है कि शौक जब मेहनत और सही मार्गदर्शन से जुड़ जाता है तो वह नई संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो एक छोटा सा प्रयास शुरू करते हैं और देखते ही देखते उनका प्रयास बहुत से लोगों के जीवन में बदलाव का रास्ता बना देता है। ओडिशा के देवरीगढ़ में एक गांव है, धोडरो कुसुम। कुछ साल पहले तक इस गांव की मैथिली भुए जी लगभग हर दिन जंगल जाती थी, कभी जलावन की लकड़ी लेने, कभी महुआ और केंदू पत्ता चुनने, तो कभी बांस की कोंपले और दूसरी वनुपज लाने। उनके और वहां के अनेक परिवारों की बहुत सी जरूरतें इसी जंगल से पूरी होती थी। लेकिन फिर मैथिली जी देवरीगढ़ इको टूरिज्म से जुड़ी। यहां से जंगल के साथ उनका रिश्ता एक नई दिशा में बदल गया। अब जंगल का संरक्षण भी उनकी आजीविका का माध्यम बन गया। साथियों, मैथिली जी के जीवन में आए इस बदलाव ने दूसरी महिलाओं को भी प्रेरित किया। आज 60 से अधिक महिलाएं जंगल के संरक्षण में जुड़ चुकी हैं। कोई वन्य जीवों की सुरक्षा का दायित्व संभाल रही है, कोई घास के मैदानों के विकास से जुड़ी है, तो कुछ महिलाएं इको टूरिज्म एक्टिविटीज में योगदान दे रही हैं। साथियों, मैथिली जी और देवरीगढ़ की इन बहनों ने दिखाया है कि प्रकृति की रक्षा भी हो सकती है और जीवन में समृद्धि भी आ सकती है। इन सभी बहनों का प्रयास हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, आज हमारी बेटियों के सपनों की उड़ान धरती से निकलकर अंतरिक्ष तक पहुंच रही है और आपको यह जानकर गर्व होगा कि भारत ऐसे सपने देखने वाली दुनिया की हजारों बेटियों को एक साथ जोड़ रहा है। इस प्रयास का नाम है मिशन शक्ति सेट। इसके माध्यम से 108 देशों की 12,000 छात्राओं को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी सीखने और इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे पर इस मिशन की एक सुंदर तस्वीर उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में देखने को मिली। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में मिशन शक्ति सेट के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दुनिया के अलग अलग देशों और भारत से आई करीब 100 छात्राएं एक साथ जुटी। भारत के दूर दराज क्षेत्रों से चुनी हुई छात्राएं भी इसमें हिस्सा ले रही हैं। इस पूरे प्रयास का लक्ष्य भी बहुत खास है। पूरी तरह छात्राओं की भागीदारी से तैयार एक सैटेलाइट को मून की ऑर्बिट में भेजने की तैयारी है। साथियों, मुझे विश्वास है कि इनमें से अनेक छात्राएं आने वाले समय में साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल एवोकाडो फल की बड़ी धूम है। इस फल को पहले शायद ही कोई जानता था। इसकी वैल्यू और डिमांड दोनों कम थी, लेकिन आज इसे डाइनिंग टेबल पर खूब देखा जा रहा है। आज यह हेल्थ और प्रीमियम मार्केट की पसंद बन गया है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी ये बहुत मददगार है। आंध्र प्रदेश में कड़पा के वरदराज जी का उदाहरण है। वे कई वर्षों से अपने खेत में टमाटर और केले की खेती कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने दोस्तों के फार्म में एवोकाडो की फसल देखी। इसके बाद उन्होंने YouTube से इस पर जानकारी जुटाई। अब तक वे करीब

0: गया, उन्हें इसके अच्छे दाम मिल रहे हैं और कमाई भी बढ़ी है। कर्नाटका में चिकमंगलुरु के कुछ किसान भाई बहनों ने तो कॉफी प्लांटेशन के बीच एवोकाडो लगाया है, इससे उन्हें कॉफी और काली मिर्च के साथ अतिरिक्त कमाई भी हो रही है। साथियों, हम शहरों के रेस्टोरेंट में अक्सर एवोकाडो टोस्ट के बारे में सुनते हैं, लेकिन इसी एवोकाडो के जरिए हमारे इनोवेटिव किसानों ने कमाई की एक नई रेसिपी ढूंढ ली है, यानी अपने देश के एवोकाडो से आपके टोस्ट का स्वाद भी बढ़ा और किसानों की आमदनी भी बढ़ गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों में 3 सितंबर को हम महानायक उत्तम कुमार जी की जन्म शताब्दी मनाएंगे। साथियों, उत्तम कुमार जी एक वर्सेटाइल एक्टर थे जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में रस बस गए। फिल्म लवर्स का मानना है कि श्रीमान सत्यजीत रे ने फिल्म नायक द हीरो की पूरी स्क्रिप्ट महानायक उत्तम कुमार जी को ध्यान में रखकर लिखी थी। श्रीमान सत्यजीत रे ने कहा था कि उनमें डिग्निटी के साथ साथ अद्भुत इमोशनल डेप्थ भी था। किरदार को वो जीवन बनाने के लिए बहुत मेहनत करते थे। उत्तम कुमार जी अपनी सहजता के साथ ही फिलैंथ्रोपी के लिए भी जाने जाते थे। उनके जीवन से कभी भी हार न मानने की एक और बड़ी सीख भी मिलती है। उनकी शुरुआती फिल्में बहुत नहीं चली, लेकिन उन्होंने अपने काम पर फोकस बनाए रखा। इसी का परिणाम था कि उन्होंने इतनी ऊंचाई हासिल की। साथियों, मुझे ध्यान है कि जब मैं कोलकाता में रोड शो कर रहा था तो मैं उत्तम कुमार जी के घर के सामने से भी गुजरा था। वहां मुझे एक व्यक्ति ने उनकी एक तस्वीर भी भेंट की थी। मैं एक बार फिर महानायक उत्तम कुमार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वे हमेशा हम सबके दिलों पर राज करते रहेंगे। महानायक उत्तम कुमार चिरोदिन मानुषे हृदय राज कोरबैन। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पर्व और त्योहार हमारी परंपराओं के साथ साथ हमें एक दूसरे से जुड़ने का भी अवसर देते हैं। आने वाले दिनों में हम और भी कई महत्वपूर्ण पर्व मनाने जा रहे हैं। 4 सितंबर को जन्माष्टमी का पावन पर्व है। सितंबर में ही हम विश्वकर्मा पूजा भी मनाएंगे। इस अवसर पर अपने आसपास के कारीगरों, शिल्पकारों और विश्वकर्मा साथियों का सम्मान करना चाहिए। कुछ महीनों बाद दीपावली भी आने वाली है, इसकी तैयारियां भी धीरे धीरे शुरू हो रही हैं। त्योहारों के इस मौसम में मैं एक बार फिर आपसे वोकल फॉर लोकल का आग्रह दोहराऊंगा। और वोकल फॉर लोकल का मतलब केवल मिट्टी के दिए खरीदना नहीं है, इसका विजन बहुत बड़ा है। हम अपने घर के लिए जो भी सामान खरीदते हैं उसे एक बार जरूर देख लें कि वो भारत में बना हो। भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग भारत में बनी चीजों पर गर्व करने से ही प्रशस्त होगा। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हमारे क्रिएटिव वर्ल्ड के साथियों, इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। मेरा आपसे आग्रह है कि स्वयं भी वोकल फॉर लोकल को अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए। साथियों, आपके आसपास भी ऐसे अनेक लोग होंगे जो अपने छोटे छोटे प्रयासों से समाज में बड़ा बदलाव ला रहे हैं। आप उनके बारे में मन की बात के लिए जरूर लिखिए। आपका भेजा हुआ अनुभव देश के किसी कोने में किसी के लिए नई प्रेरणा बन सकता है। मुझे आपके सुझावों और अनुभवों की प्रतीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: श्रोते हो, प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी आपल्या देशाचे पंतप्रधान श्रीयुत नरेंद्रजी मोदी हे आकाशवाणीच्या

प्रवचन शुरू करने के पहले उन सजग सावधान श्रोता का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने कल के प्रवचन पर जिज्ञासा प्रेषित करी है। कल 14 पूर्व की ज्ञान की सीमा, ज्ञान की असीमता बताते हुए मैंने जो गुरुदेव के मुंह से तिलुक छंद संग्रह के विवेचन के समय सुना था वो मैंने बताया, और जिसने भेजा उनका फिर एक बार अभिनंदन के जैन तत्व प्रकाश में उससे थोड़ा डिफरेंट गया है कि एक हाथी डूबे इतने सही में एक पूरब, दो हाथी डूबे इतने दो पूरब, ऐसे 14 तक जाते जाते बढ़ते हुए 8192 हाथी डूबे इतने शाही से लिखा जाए वो 14 पूर्व का ज्ञान है ना। अब ये उपमा है, आप उसको ये डिफरेंट है, अपोजिट नहीं है, है ना। अब एक हाथी डूबे उतनी शाही, अनेक हाथी के वजन के बराबर शाही, ये दोनों भी क्या है, उपमा है ना। तो दोनों में विरोध नहीं, दोनों में क्या, केवल प्रेजेंटेशन का एक अलग तरीका है। उसका मीनिंग क्या है, केवल कि 14 पूर्व का ज्ञान लिखा नहीं जा सकता है ना, 14 पूर्व का ज्ञान लिखा नहीं जा सकता। उसकी साधना के कारण से जो ज्ञान अंदर से प्रस्फुटित होता है, ये नाप नहीं है, ये उपमा है, ये परिमाण नहीं है, तोलमाप नहीं है रामेश्वर, ये तोलमाप नहीं है, है ना। जैसे कुप्पन देते हैं ना, उसका मुंह चांदी सा है, देते हैं ना, अब देखने जाएंगे तो चांद दिखेगा क्या, वो नहीं ना। तो ये क्या है, उपमा है कि 14 पूर्व का जो ज्ञान है वो कितना असीम है, उसको बताने के लिए ये दोनों उपमाएं दी गई हैं। दोनों उपमाओं में कोई विरोध नहीं है। जिन्होंने भी सवाल भेजा उनको फिर एक बार धन्यवाद कि आप इतनी सजगता से सुनते हो, इसका समाधान है ना। दूसरी बात भी कर लूं, जो मैंने अभी प्रवर्तक से जी की आज्ञा ले ली है कि आज की धर्म सभा में उस क्षेत्र के संघ के संघ आया हुआ है, जिस क्षेत्र को, जिस संघ को गुरुदेव का परिवार कभी भूल नहीं सकता है और भूलना नहीं चाहिए, वो ही हिंगन घाट का संघ। 26-27 साल की उम्र में हिंगन घाट के पास में अलीपुर गांव में, अलेगांव में रतन ऋषि जी महाराज साहब का आयुष्य पूर्ण हुआ, और उस समय उस उम्र में गुरुदेव को आस्था से, भक्ति से, अवभाव से कि ये वही महसूस कर सकता है जिस पर कभी बीती हो कि गुरु का नहीं रहना और उस समय किसने संभालना, जैसे प्रवर्तक से जिन मुझसे में संभाला है। उस समय उस संघ नहीं,

और इसलिए जब नागपुर का चतुर्मास पूर्ण हुआ तो वर्धा जाना था और वर्धा नागपुर से बिल्कुल नजीक है, लेकिन गुरुदेव सीधे वर्धा नहीं गए। गुरुदेव हिंगन घाट पधारे और फिर वर्धा पधारे थे और उस समय रतन ऋषि जी महाराज साहब की स्मृति में संघ के पूर्वजों ने इनके पूर्वजों ने शिक्षण संस्था की स्थापना करी थी और वो शिक्षण संस्था अभी भी मैं 2 साल पहले देखकर आया हूं, बहुत विस्तार हो चुका है। ऐसा संघ आज यहां पर आया हुआ है और मैंने प्रवर्तक जी से निवेदन किया कि ये साल अगला साल जो है रतन ऋषि जी महाराज साहब की पुण्य शताब्दी वर्ष है। हिंगन घाट वालों आपको धन्यवाद, आप खड़े रह सकते हो जगह पर। कि आपके कारण से ये सारी यादें एक्टिवेट हुई हिंगन घाट और मैंने प्रवर्तक से इसे निवेदन किया कि अगला वर्ष हम शिक्षा महर्षि दादा गुरु श्री रतन ऋषि महाराज साहब का पुण्य शताब्दी वर्ष के रूप में संपन्न करें। इसलिए कि महाराष्ट्र में पहले किसी पुरुष की दीक्षा हुई है तो बाप बेटों की हुई है तिलोक ऋषि महाराज साहब के पास। मनदोंडी उनकी जन्मभूमि है, पिरगल उनका परिवार है, सूर्यचंद जी उनके पिताजी थे, माता जी का स्वर्गवास होने के बाद पहला ही गुरुदेव तिलोक ऋषि महाराज का चौमासा जब घोड़नदी चल रहा था रामेश्वर कमी कर थोड़ा चतुर्मास में वहां पहुंचे थे और वहीं पर पिता का मन हुआ दीक्षा लेने का। कमी करे सिंह पिता का मन हुआ दीक्षा लेने का और बेटे ने भी कहा कि आप लेते तो मैं भी ले लेता हूं। कुछ यादें होती हैं जो बहुत कम खुलता हूं। जब पहली बार भोपाल के पास गुरु चरणों में मत्था टेकने का सौभाग्य मिला था और उसके बाद मिसरोद गांव में गुरुदेव के साथ सीधी बातचीत करने का जिंदगी का पहला सौभाग्य मिला था। उसमें गुरुदेव ने बात करते हुए जो बात कही थी उसमें मेरी उम्र 16 साल की थी और गुरुदेव ने फरमाया था कि 10 साल की उम्र में दादा गुरुदेव तिलोक ऋषि महाराज से दीक्षा ली, 11 साल की उम्र में मेरे गुरुदेव ने दीक्षा ली, 13 साल की उम्र में मेरी दीक्षा हुई तो 16 साल का है। कुछ शब्द जो होते हैं वे कभी स्मृति से मिटते नहीं। तो आइए अपनी मूल बात पर शुरू करते हैं इन यादों के साथ कि प्रवर्तक जी ने आज्ञा दी इसलिए मैंने कि शताब्दी वर्ष के बाद पहले कुछ सोचा नहीं था लेकिन यहां बैठने के बाद मन में आया तो उनके चरणों में निवेदन किया। उन्होंने कहा मनाते हैं, उनकी आज्ञा मिल करके बाकी योजना तो बनती रहेगी। ऐसा हिंगन घाट का संघ आया है, मैं भी वहां वैराग्य अवस्था में गुरुदेव के चरणों में था और उसके बाद पुनः हिंगन घाट जाने के लिए मुझे 50 साल लगे थे।
उसके बाद सीधा मैं 24 में 1 जनवरी 2024 में ही वहां पर पहुंच पाए थे हम लोग। लंबा चौड़ा रास्ता था, बहुत चक्कर लिया, लेकिन मन में भाव थी कि वहां जाना ही जाना है। और ऐसा ही पूरा समर्पित संघ,

0: परम सद्धेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटिश वंदन। जो बहुत कृपा करके यहां पधारते हैं और जिनका सभा में होना ही बहुत कुछ कर जाता है, ऐसे श्रद्धास्पद प्रवर्तक श्री जी के चरणों में हम सभी की वंदन। स्नेही संत वृंद, विदुषी महासती वृंद, नव तत्व की यात्रा पर निरंतर गतिशील श्रद्धालु श्रोतागण, कल एक न्यू डायमेंशन पर अपनी चर्चा शुरू हुई थी। श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास बल प्राण, अनापान, शरीर है, इंद्रियां है, आहार भी है, लेकिन पूर्णता तभी होती है जब श्वास होता है। जब तक श्वास नहीं तब तक वो जीव को अपर्याप्त कहते हैं, और जो श्वास नहीं ले पाया, ध्यान में रखना, बहुत छोटा सा वाक्य समझ में आया तो पकड़ना, नहीं आया तो छोड़ देना। जन्म लिया लेकिन श्वास नहीं ली तो दूसरे जन्म में जाना पड़ता है। जन्म लिया लेकिन श्वास नहीं ली, उतने समय में अगले जन्म का आयुष्य बंद करके मृत्यु हो जाती है, और उसको कहते हैं अपर्याप्त अवस्था में आयुष्य पूर्ण किया। कौन सी अवस्था में? अपर्याप्त अवस्था में। और श्वास लिया तो जीवन शुरू होता है, और कहां श्वास लेना है? मां के कुक्षी में। जन्मने के बाद जिस सांस की आप चर्चा करते हैं वो सांस, वो फिजिकली है, लेकिन प्राणों का जो सांस है, पहला जो सांस है जिसमें नाक भी नहीं बनाए, लंग्स भी नहीं बने, कोई रिसेप्टिव सिस्टम बनी ही नहीं, उस समय भी सांस लिया जाता है। जैन बायोलॉजी को भी थोड़ा चलते चलते समझ लो। कि एक केंद्रीय जीव को कोई नाक नहीं होता है, वनस्पति को कोई नाक नहीं है और लंग्स भी नहीं है, लेकिन श्वासोच्छ्वास है, ब्रीदिंग है। तो बिना श्वास, बिना लंग्स के, बिना नाक के भी श्वास लिया जाता है। ये जैन बायोलॉजी है। बेंद्रीय जीव को भी नाक नहीं होता है, केवल रसनेन्द्रिय होता है, लंग्स उसके पास भी नहीं होते हैं, फिर भी वो जीव श्वासोच्छ्वास करता है। कि बिना श्वासोच्छ्वास के कोई जिंदा रह नहीं सकता है। जीवन चलता है श्वासोच्छ्वास के साथ, और जैसा श्वासोच्छ्वास वैसा जीवन। इस वाक्य को पक्का याद कर लीजिए कि आश्रो श्वास है ना, आश्रो इनहील, और इनहील जो होता है, जिस जीव के पास जितने प्राण होते उतने प्राणों की शक्ति को ग्रहण करने के लिए श्वासी माध्यम बनता है। कभी आपने सोचा कि तीर्थंकर महावीर दीक्षा लेने के बाद केवल दो पोस्चर में रहते हैं, स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, नो सिटिंग नो स्लीपिंग, नो लेइंग। 12.5 साल यदि आप और मैं 12 घंटे भी खड़े रह जाएंगे ना, तो पांव की स्वेलिंग तो पक्की आ जाएगी। केवल चेयर पर भी बैठते समय पांव छोड़ करके बैठते हैं तो भी स्वेलिंग शुरू हो जाती है। 12.5 साल ओनली 2 पोस्चर, नो सिटिंग नो स्लीपिंग, कैसे रहे होंगे? और तपस्या उनकी जो चलती है वो चुविहार चलती है। कैसे चलती है? चुविहार। छह महीने की तपस्या में न आहार है, न पानी है, न सिटिंग है, न स्लीपिंग है। और स्टैंडिंग पोस्चर में भी खड़े रहते समय भी दीवार का सहारा लेकर के खड़े नहीं रहना है। अठट बैठता ना भी चेयर को सहारा लगे। कैसे रहे हो? कहां से ऊर्जा? 6 महीने तक कैसे? ये सवाल कभी मन में आता कि नहीं आता? नहीं आता, आता ही नहीं अपने में। अपने ने दूसरा सवाल घना रेवे ना, उन्हें ईसु क्यों बोलियो, उन्हें महाराज साथ ईसु व्यवहार क्यों करियो, ईसु क्यों आगे महाराज साथ है? उन एक सवाल के जवाब में पूरा दिमाग उलझा देते हो। और जवाब मिलता है? नहीं मिलता है। और मिला तो भी क्या होना है, हाथ में क्या आना है? रामेश्वर, हाथ में क्या आना है? लेकिन ऐसे सवाल पूछो कि जिससे कुछ हाथ में आ जाए। उसमें किसके बल पर, कहां से ऊर्जा आती थी? गहरा श्वास, क्या गहरा श्वास? आप लोग कहते हैं ना कि हमारे सब ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। ओवर थिंकिंग नहीं है, ओवर ईटिंग भी नहीं है। ओवर थिंकिंग ओवर ईटिंग ये रिजल्ट है। कॉज इज शालो ब्रीदिंग। सांस कितना छोटा हो गया। यदि आप अपने चेक करोगे ना कभी, तो आपके 1 मिनट में कम से कम 25 से 30 श्वासोच्छ्वास हो जाते हैं। कितने? और स्वस्थ रहना हो, हेल्दी रहना हो, तो 1 मिनट में मैक्सिमम से मैक्सिमम 12 या 13 श्वासोच्छ्वास होने चाहिए। और साधना में गहरे उतरना, मन को शांत करना हो, इंद्रियों को शांत करना हो, भूख पर नियंत्रण लाना हो, 1 मिनट में जितने श्वासोच्छ्वास कम करोगे उतनी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी। इस श्वास से ऊर्जा है। जो पेट भर करके श्वास नहीं लेते हैं उनको पेट भर करके नहीं ओवर पेट खाना पड़ता है। वो बच्चा पेट भर करके श्वास लेता है लेकिन माँ उसको खिला खिला करके पेट भर खाना सिखाती, पेट भर श्वास लेना बंद करा देती है, और डायफ्राम को हिलता ही नहीं ना, पेट खाली रहेगा तो डायफ्राम हिलेगा। अब ठुस ठुस के भर लिया तो डायफ्राम का हिलना बंद हो गया, और डायफ्राम का हिलना बंद हो गया तो लंग्स का स्प्रेड होना बंद हो गया, और लंग्स का स्प्रेड होना बंद हो गया तो श्वास छोटी हो गई, ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर गया ही नहीं। जब कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर जाएगा तब जाकर के अंदर के टॉक्सिन की निर्जरा होगी, और जिस समय श्वास गहरा लोगे उस समय टॉनिक आएगा। तीर्थंकर महावीर को कंटिन्यू याद करते रहना, सवाल केवल इतना ही पूछते रहना कि क्या स्किल थी। किसी भी मेडिकल साइंस के डॉक्टर को जाकर पूछूंगा तो स्टूडेंट बिल्कुल पक्का कहेगा कि यदि व्यक्ति खड़ा है तो उसको ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड को ऊपर पहुंचाने के लिए पंपिंग प्रॉपर नहीं होगी तो पांव पर सूजन आएगी ही आएगी, आएगी आएगी। क्या पावरफुल पंपिंग होती होगी कि 12.5 साल खड़े रहने के बावजूद भी पांव पर स्वेलिंग नहीं है। बाहुबली को भी याद कर सकते हो। इसलिए बुरा नहीं मानोगे ना, जैनियों ने जैन धर्म को, तत्वज्ञान को समझा नहीं, इसलिए वो कहीं भी मिसगाइड हो जाते हैं। ना तीर्थंकर महावीर को समझा, ना गुरुदेव को समझा। गीत गाना अलग बात है और समझना अलग बात है। मैंने केवल एक ही क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि 12.5 साल तक ओनली स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, कल्पना तो करो या कम से कम एक काम करके देखे ना। आप देखते होंगे ना, अभी कुंभ मेला होगा ना, और कुंभ मेला में कहीं आपको हठयोगी मिलते हैं कि जिन्होंने ऊपर ही हाथ टांग के रखा हुआ है, उनके हाथ की हालत क्या होती है? नॉर्मल रहता है हाथ? उनके पांव नॉर्मल रहते हैं? नहीं। केवल पोश्चर का सवाल नहीं है, सवाल है कि अंदर की शक्ति, अंदर की ऊर्जा कैसे एक्टिवेट कर सकता और किस तरीके से, और उसके लिए जैन आगम में दो ही गए, श्वासोच्छ्वास और आतापना। क्या आतापना? जो तीर्थ शिष्य जी लेते हैं, उसके बहुत सारे सीक्रेट है। उसके सीक्रेट है केवल धूप में बैठना आता अपना नहीं है, वो सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को रोम छिंद्र से ग्रहण करने के लिए उतना गहरा श्वास और उतने शरीर बल प्राण को जागृत करना। कितने प्राण है? 10 प्राण है, और मैक्सिमम जो लोग यहां बैठे हुए हैं ना, उनको यदि 10 प्राण के नाम पूछूंगा तो बोलेंगे प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। इन प्राणों की चर्चा अर्हत योग में नहीं है, ये चर्चा आगम की नहीं है। यहाँ 10 प्राण है, 5 इंद्रियों के 5 बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काया बल प्राण, श्वासोच्छ्वास बल प्राण, आयुष्य बल प्राण, ये वो बल प्राण है। और प्राण है इसलिए तुम प्राणी हो, और प्राण जितने तुम्हारे सशक्त होंगे उतने तुम सशक्त प्राणी रहोगे। काया में बल है लेकिन काया में प्राण है क्या? और वो बल प्राण कैसे समृद्ध करना है, ये 9 तत्व की चर्चा है। कैसे आश्रय करना, कैसे संवर करना, कैसे निर्जरा करना, कैसे बंद करना। बंद करना इसका मतलब श्वास को रोकना। और मैंने पहले भी एक बार, यदि आपको याद आता होगा तो पहले जिक्र किया था आपके साथ, यही प्रक्रिया कि 33 सागरूपम का आयुष्य अनुत्तरी वनवासी देवता का भी है और 33 सागरूपम का आयुष्य सातवीं नारकी का भी है, लेकिन दोनों की श्वास लेने की जो टेक्निक है, जो स्कीन है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। नारकी के जीव ऐसा श्वास लेते हैं कि जैसे लोहार की वो धामनी चलती है ना, या कभी आपने देखा हो कि जिसको आस्थमा है ऐसी चलती है। और अनुत्तरी मनवासी के देवता 33 पखवाड़े में एक सांस, और इसका परिणाम क्या होता है पता है आपको ना? पता नहीं होता, ध्यान में। ऐसी श्वास जो लेते हैं वहां का आयुष्य पूर्ण करके मनुष्य जन्म में आते हैं, सीधे मोक्ष में जाते हैं। 9 सेकंड बर्थ, जितना श्वास गहरा करोगे उतने तुम्हारे प्राण भी स्वस्थ होंगे, तुम्हारा कषाय, तुम्हारा अहंकार जिसका युगो हट होता है ना, उसका युगो उतना ही कमजोर होता है। युगो हट होता है आपका, यस और नो? कैसे हट होता है आपका युगो? सोचो, यदि किसी का कांच का बर्तन है, किसी का मिट्टी का है, किसी का लकड़े का है और किसी का स्टील का है, कांच के बर्तन को छोटा सा लगा तो टटक, मिट्टी को थोड़ा सा और लगेगा, लकड़ी को और थोड़ा लगेगा, लोहे को डैमेज होगा। मैंने क्यों कहा कि जिनका ईगो कमजोर होता है उनका हट ज्यादा होता है, मजबूत ईगो वालों का हट नहीं होता है। छोटी छोटी बातों में तक ईगो हट हो जाए, छोटी छोटी बातों पर। इसका मतलब तुम्हारा ईगो कैसा है? कांच के बर्तन जैसा है। और ऐसी कांच है, ऐसी कांच है, बिल्कुल पतली सी कांच, उन्हें कंकर मारन की जरूरत उसको नहीं, हवा से फूके तो भी टूट जाए, इतनी पतली कांच का ईगो है। और तीसरे तीर्थंकर महावीर है, गोशालक इतने हथौड़े चलाता है, संगम देव इतना हथौड़े चलाता है, लेकिन उनका ईगो हट होता ही नहीं है, ईगो हट होता ही नहीं। अपना कोई अपना कने देखियो नहीं तो भी अपने ईगो हट हो जाए। तुम्हारी क्या मेरी बात करो, कोई सामने आया ना, हाथ नहीं जोड़ियो, होता था अब नहीं होता है, अब नहीं होता है। और कोई वंदना करे तो कोई गुब्बारे में हवा भी नहीं भरती मेरी, वो वंदना करती उसकी श्रद्धा, वंदना नहीं करती उसकी भावना, उसने वंदना करी तो मैं श्रेष्ठ हूं, नथिंग। उसने वंदना नहीं करी तो मैं निकृष्ट हूं, नथिंग। तुम्हारी वंदना करने के कारण से कोई श्रेष्ठ होता होगा तो कितनी जगह पर तुम मत्था टेकते हो वे सारी मूर्तियां तो कहां से कहां पहुंचनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ होगा तो निकृष्ट होगा तो स्वयं के चरित्र से, स्वयं की भावना से होगा, किसी की वंदना करने के कारण से नहीं होगा। और इसलिए महावीर पर कोई असर ही नहीं होता है। गहरा श्वास, और ये श्वास यदि पेट भर करके लोंगे तो पेट भर करके खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम तो और खाते हो क्योंकि तुम्हारे श्वास क्या हो गई, बहुत। ज्यादा ग्रोथ बच्चे की, आपकी और मेरी भी गर्भ में ज्यादा फास्ट ग्रोथ हुई कि जन्मने के बाद ज्यादा ग्रोथ हुई? गर्भ में तो कितनी फास्ट ग्रोथ है, 9 महीने में तो पूरा तैयार। वहां पर क्या था, मां से कितना लेता था, मां जो खाती है पीती है उसका 1%। लेकिन गर्भ की जो स्थिति है ना, उसके जैन बायोलॉजी कि गर्भ में जीव जितना लेता है उसमें से छोड़ता कुछ भी नहीं है, पूरा जो लेता है पूरा 100% यूज में लेता है। श्वास भी लेता है तो पूरी काम में लेता है, आहार भी लेता है तो पूरी काम में लेता है। और संभल करके सुनना, सुनता भी है तो पूरा याद रखता है, देखता भी है तो पूरा याद रखता है, उसकी आंख उसकी कान उसका हृदय मां के साथ कनेक्टेड है। जो जो मां देखती है वो बच्चा देखता है, जो जो मां सुनती है वो बच्चा सुनता है, मां डरती है बच्चा डरता है। कल बेंगलोर के कारण बेबी मदर आई थी और उसने पूछा कि मरा सब बेबी बहुत अच्छी बोले पर डरती बहुत है, डरती बहुत है। तो आपने तो सिंपल क्वेश्चन देते हैं, तेरी 9 महीने में क्या हालत है? मरा साहब मुझे तो आवाज होता डर लगता था। मैंने कहा वो तेरा डर वहां के पहुंच गए, तो ये सारी यात्रा। ओके, आश्रो किसका, श्वास का, समेट रहा हुआ है। जितना गहरा श्वास लोगे उतने गहरे दिल के बनोगे। गणपति बप्पा का पेट बड़ा है, आपका पेट ना, अभी तो फैशन चली है ना, जीरो। वो जीरो पेट के नाद में वो श्वास कहां जीरो गए पता ही नहीं चला। उन्हें बीमारी इधर ज्यादा है, हम फिर थोड़ा कुछ करते थक गई आयो। मैं कभी कभी पूछता हूं इनको, तुम्हारी दादी ज्यादा काम करती थी कि तुम ज्यादा काम करते हो? हेलो, बढ़िया से बढ़िया खाना तुम ज्यादा खाते हो कि दादी ज्यादा खाती थी? बढ़िया से बढ़िया खाना तुम खाते हो, इतनी मिठाई तो पहले बनने का कोई सवाल ही नहीं था। फिर वे गहरे लोग थे, उनका श्वास भी गहरा था। और श्वास गहरा करते समय ध्यान में रखना, नौकार मंत्र गिनते हुए श्वास गहरा करोगे तो पुण्य का आश्रय होगा, और किसी को गाली देते हुए श्वास गहरा करोगे तो कल्याण होगा। इसलिए जिस समय 2.5 करोड़ का जाप हुआ था उस समय अलग अलग तरीके से जाप कराया था, उसके पीछे उद्देश्य केवल इतना था तुम्हारा श्वास लंबा हो जाए। श्वास लंबा हो जाए। और जिसका श्वास लंबा होना शुरू हो गया उसका टायर्डनेस चला गया कि ऑक्सीजन चाहिए ना, और ऑक्सीजन कंज्यूम करने के लिए अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना चाहिए। श्वास लेना भी गहरा और छोड़ना भी गहरा। आइडियल टाइम तो चर्चा करना तुम्हारे साथ भारी है, लेकिन कहते हैं कि यदि 10 सेकंड श्वास लेने में लगे हैं तो 20 सेकंड तक श्वास को रोकना चाहिए और 40 सेकंड में श्वास छोड़ना चाहिए। छोड़ने का टाइम कितना होना चाहिए? 4 गुना है। एकदम 4 गुना मत बन जाओ जो है, लेकिन कम से कम यहां से तो शुरुआत करो घड़ी की तरफ देख करके, और एक छोटा सा कह रहा हूं प्रयोग करते रहो दिन में कम से कम हर घंटे में एक 500 गहरे लेने। कितने? 500। ये आपको पता है क्या कि हमारे साधुचर्या में परमात्मा ने हमारे के विधान लगाया, हंसोमती हसोला थी, गोत्री करने के पहले भी काय स्वर्ग कर, गोत्री करने के बाद भी काय स्वर्ग कर, स्वाध्याय शुरू करना है तो भी पहले काय स्वर्ग कर, और स्वाध्याय पूरा हुआ तो भी वापस काय स्वर्ग कर, गोत्री के लिए जाना है तो भी काय स्वर्ग कर जा, और गोत्री लेकर आया तब भी काय स्वर्ग कर, और बाथरूम जा रहा है तो भी काय स्वर्ग करके जा, और बाथरूम जाकर आया तो भी काय स्वर्ग कर, और वो श्वासोच्छ्वास की गिनती दी वहां पर। सत्तावीस श्वासोच्छ्वास, कहीं 108 श्वासोच्छ्वास। ये जो 4 लोगों से आपको गिनने के लिए कहते हैं ना, वो अपने बहुत कुछ करप भ्रष्टीकरण हो चुका है, उसके लिए रहता है कि लोगस उज्जोए करे, तब तक इनहेल करना है, धम्म तीर्थ येरे जिने एक झील करना है, अरिहंते कित्ते सम इनहेल करना है, 24 संपी केवली एक झील करना है, इनहेल एक झील। वैसे नौकार मंत्र जाप की भी जो सीक्रेट विधियां गई वो ऐसी गई है कि नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम इनहेल, नमो आयरियानम नमो वज्जानम नमो लोये समसाने एक झील, इनहेल एक झील, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये शुरुआत है, फिर आगे कैसे बढ़ना है? पूरा नौकार मंत्र इनहेल करते हुए और 2 नौकार मंत्र में एक झील, ये बढ़ते जाना आएगा। अंतगढ़ सूत्र में जो आता है ना, तपस्या चलती है और 1 बजे की गजब की तपस्या चलती है, गजब की तपस्या चलती है, रोज आहार करना और रोज आहार बढ़ाते जाना। हेलो, कई किए मैं, रोज आहार करना, रोज आहार, आज 1 रोटी खाए तो कल 2 खाओनी, कल 2 खाए तो परसों 3 खाओनी, पीछे 4, पीछे 5, पीछे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अंतगढ़ सूत्र सुना नहीं सुना आपने, और फिर वापस 15 से 0 पर आना। पूनम में आहार बढ़ाते जाना, उजले पक्ष में आहार बढ़ाते जाना, कृष्ण पक्ष में आहार घटाते जाना, रोज खाऊनो है, और फिर भी उन्हें तपस्या करे, लेकिन उसका गणित दूसरा है। ऐसी प्रतिमा की साधना जाती है कि 1 दत्ती आहार, 2 दत्ती आहार, 3 दत्ती आहार, 4 दत्ती आहार, लोग सोचते हैं हमें तो आहार बढ़ते जा रही है, लेकिन उसका नियम रहता है, उस साधु को एक पाठ दिया रहता है। क्या दिया रहता है? एक पाठ, पहले महीने में वो पाठ एक श्वास में इतना लंबा श्वास लेना है कि वो पाठ एक श्वास में पूरा हो जाए, दूसरे महीने में वो पाठ एक श्वास में दो बार पूरा करना है, तीसरे महीने में वही पाठ एक श्वास में तीन बार पूरा करना है। आपके समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल कि गुरु ने उसको कोई लोकस का पाठ दिया है, तो पहले महीने में क्या करना है, उसने एक श्वास में पूरा लोकस बोलना है, दूसरे महीने में एक श्वास में दो लोकस बोलने, तीसरे महीने में हाँ वो अंदर में चलता है। तो आज क्या प्रयोग करोगे, कुछ भी काम हुआ है ना, कुछ भी काम हुआ उसके बाद तुरंत दूसरा काम शुरू नहीं करना है, एनी एक्टिविटी टेक रेस्ट। कायस्थ का मतलब क्या, टेक रेस्ट, विषमे ज खनम एकम, एक तीन नौकार मंत्र कैसे, नमो हरिहंता नमो सिद्धानम इन हिल किया, नमो ऐरियानम नमो झनम नमो श्वसन एक झील किया, ऐसे तीन नौकार मंत्र यानी तीन श्वसोच्छा जितना विश्राम करो। कर सकते नहीं कर सकते, हेलो, अरे कठिन कितनी छोटी सी बात पूछी था मैं, आराम करूं को की रही हो, काम करूं को थोड़ा किया, हर क्रिया के बाद क्या करना, रेस्ट रेस्ट, पता चलेगा आपको कि श्वास के क्या, पर नौकार मंत्र गिंजो नहीं तो गुनो लेखा तो मयूरो गीत कर्जो मत उल्टा उद्योग है ना, ए भू कुठे तू, टाइम चला ना, मंगल पाठ है ना, बैठे बैठे प्रभु तक से
1: गुरुदेव की आज्ञा।

0: नमो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो चतारी शरणम बहुज्यामि अरियंते शरणम बहुज्यामि सिद्धे शरणम बहुज्यामि साहू शरणम बहुज्यामि केवली पन्नतो धम्मो शरणम बहुज्यामि अरियंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्ररूपी दया धर्म का शरणा चार शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पदो।
1: अरहम अष्टमंगल का 72 आवर्स का शिविर 4 सितंबर 5 सितंबर 6 सितंबर को शुरू हो रहा है, 3 सितंबर को रात में उसमें आपको पहुंचना है। पुरुषाकार की साधना जिन्होंने की उनके लिए नहीं, लेकिन जिन्होंने पुरुषाकार की साधना नहीं करी है उनके लिए सुवर्ण संधि है, सुंदर अवसर है कि स्वस्तिक कैसे बनना। दीवार पर स्वस्तिक बहुत बना लिए, दिल में स्वस्तिक कैसे बनाना, अपने अंतर के प्राणों में स्वस्तिक कैसे बनाना और दिल को कैसे स्वस्तिक में बनाना। दिल स्वस्तिक हो गया तो तुम्हारा मंगल होगा। दीवार पर मंगल लगाने से तुम मंगल नहीं होते हो। तो अष्टमंगल को अंतर में कैसे पहुंचाना, इसका 72 आवर्स का शिविर 4, 5, 6 को 18 साल से ऊपर के लिए। अरहम पेरेंटिंग का शिविर है 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर तक 8:30 से 10 रात को है और माँ बाप कंपल्सरी है। पेरेंटिंग में माँ बाप कंपल्सरी, सिंगल पेरेंट्स के लिए कार्यक्रम नहीं है। सीक्रेट ऑफ कर्मा का दोपहर में 2:30 से 3:30 कब है भैया, डेट नहीं लिखी ना? नहीं ना बहू, सास और बहू के लिए है ना। आज के 26 है ना, आज के 26 उपास 4, 5, 6 सितंबर ललित जी गुगड़े ना, आज 26 उपास
0: 56 52 54 वत्तम दिव्यम प्यार मनत्न भगनम सहसगर्ण महत्वर्ण सबस्मय वत्यागरण ओ श्रेय।
1: और एक पुना निवासी ने भी ऑनलाइन पचकान लिए हैं, ऐश्वर्या भड़गट, उनके भी आज 26 उपास हैं। बाबू सेठ एक बार यहाँ नगर के 3 तपस्वी के मास्कमन है, 3 पचकावनी मास्कमन की है, 3 नहीं आज नहीं, आज इनके 26 है ना। तो एक बार उन परिवारों के साथ बातचीत कर करके भावा का कार्यक्रम एक दिन पहले जो 3 है ना, हाँ तो ये सीक्रेट ऑफ कर्मा का जो 2:30 से 3:30 शिविर है वो 4, 5, 6 सितंबर को है दोपहर में 2:30 से 3:30। 26 उपास के पचकान लेने वाले को आज का एकासन,
0: एकासन गुरुदेव की आज्ञा होगी श्री एकासन मजकामी दिव्यम ब्यारम अनतना वगैरह सहसगर मंत्र ओसरे ओसरे।
1: आज का अयम बिल,
0: अयम बिल गुरुदेव की आज्ञा होगी श्री अयम बिल अंबजकामी विगे विगिल के संसेटन उकिले वाले वन सहसगर न महत्र गण सबस्मय वत्य गण ओसरे।
1: कल से

0: नहीं उपास करने वाले को इसके तरफ देखो, ये वर्षी तप में एकांतर में अठाई भी करी है और पारने में मुझे लगता है कि ब्यासना तप, हाँ बागरेसा, यानी पारने में उपास के पारने में ब्यासना करते, अपना तो रोज पारना है तो ब्यासना कोई दिक्कत है अपना नहीं, बिना उपास रो पारण है अपनो तो ब्यासन तो कर सका कम से कम ना। और कोई पचकान एकासन आयम बिल उपास करना, ब्यासन के पचकान आज से शुरू कर रहा हूँ, कल से जिन जिन को भी तैयारी करके आना है वो तैयारी करके आ जाए ब्यासन।
1: दिव्यम प्यारमन नमो ओ श्री।
0: हाँ जी।

पुर प्रताप पुरंदर सिंहासनाधीश्वर राजाधिराज अश्वपति गजपति भूपति।

मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

मुझे आज भी पसंद है वो रात का आलम, आसमान से बरसती हल्की ओस की बूंदे, हाथ में चाय का प्याला, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, हल्की धुन में बजता रेडियो और हमारा पसंदीदा गाना।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: ज्यादा वफादार है। खाता है कूड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।